0: जाके दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग ए पब जल तारे। जाके दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग ए पब जल तारे। उए साजन उए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। उए साजन उए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। रहाओ जाका शब्द सुनत सुख सारे, जाकी टैल जम दूत बजारे। जाका शब्द सुनत सुख सारे, जाकी टैल जम दूत बजारे। जाकी धीरक इस मने सधारे, जाके सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सुवारे, सारन नानक तिन सद बलिहारे। जाकी धीरग इस मने सधारे, जाके सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, सारन नानक तिन साध बलिहारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवां, जाके दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग ए पब जल तारे। उए साजन उए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चतारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सहभंग, गुरप्रसाद जप आदि सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लख वार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पूरिया भार। उत्तम नीच हुकम लिख दिख सुख पाई है,
1: हुकमी बख्शीश एक हुकमी सदा पाई है।
0: हुकमे अंदर सब को बाहर, हुकम ना कोई।
1: नानक

0: असांख जाप असांख पाओ असांख पूजा असांख तप ताओ
1: असांख ग्रंथ मुख वेद पाठ असांख जोग मन रहे उदास
0: असांख भगत गुण ज्ञान विचार असांख सती असांख दातार
1: असांख सूर मोह पाक सार।

0: अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सरसन जोग बखाण जेता कीता तेता नाऊ बिन नामे नाही को थाओ
1: कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार
0: जो तुद पावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार
1: हाथ पैर तन देहे पानी तो तय उतरस
0: मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लीजे ओ तो है
1: मत पापा के संग ओ तो पहना वह कै रंग
0: पुनी पापी आखण नाहे कर करना।

0: गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पंडर खीसरे जुग जुग वेता नाले
0: गावे है मोनिया मन मोहन स्वर्गा मच प्याले
1: गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले
0: गावे जोत महाबल सूरा गावे खाने चारे
1: गावे है खंड मंडल बर पंडा कर कर रखे तारे
0: सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
1: और किते गावन से मैं चितना आवन नाने क्या विचारे
0: सुई सुई सदा सच साहेब साचा साची नाई
1: हैप्पी होसी जाए नजासी रचना जिन रचाई
0: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जन पाई
1: कर कर वेख कीता अपना जिप तिसी वड्याई
0: जो तस पावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई
1: सो पातशाह हो साहा पात साहेब नानक रहन रचाई
0: मुंदा संतोख सरम पर झोली ध्यान के करे बेपूत
1: किथा काल कुवारी काया जुग जुग डंडा प्रतीत
0: आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत
1: आदेश से आदेश आद नीरनाद नाहत जुग जुगे को बेस
0: भुगत ज्ञान दया भंडारण घट

0: चंद सूर केते केते मंडल देस
1: केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस
0: केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद
1: केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद
0: केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत न अंत
1: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद
0: सर्म खान की बाणी रूप तिथे कारत घड़िए बहुत अनूप
1: ताकिया गला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए
0: तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध जिथे कड़े सुरा सिद्धा की सुध
1: कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर
0: जिथे जोध महाबल सूर तन में राम रहा परपूर
1: जिथे सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे
0: नाम मरे न ठागे जाहे जिनके राम बसे

0: मन मान्य नमो रोग रोगिन वास्तु शनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंतर नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सचिदानंद सर्व परनाशी नूपे रूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता अदो उर्धर धंग खंग ओग हंता
0: परम परम परमेश्वर पुरुष पालंग सदा सर्वदा सदाता

0: चक्कर बकर फिरे चतुर चक मानी पुरती
1: लोग तो गाय के बखे जग जापी जे जाप
0: आद देवनाद मूरत थप्यो सबे जय थाप
1: परमोपनीत मूर्त पूर्ण परको पार
0: सर्व विश्व रचियो से अंबव गण पंचन हार
1: काल हिंद कला संजोगत काल पुरख देश
0: तरताम सुपर रहत पूते अलख बेस
1: अंगराग न रंग जाक जात पातन नाम
0: गर्भ कंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
1: आप रूप अमीका नोस एक पुरख अवधूत
0: आदरूपीन
1: भंग नात्मिक पुरख पार
0: सर्व लायक सर्व गायक सर्व
1: सर्वंता सर्व

0: त्रिलोक स्वरूप त्रिमुक्त भूत प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है
1: सदैव स्वरूप है अपेति अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है
0: समस्तो सलाम है सदैव काम वास रूप है गाद है अनूप है
1: गाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: त्रिवर्गंद्र बाध्य गंजी गाद्य सुभंग सर्भाग्य सर्वानुरागी
1: त्रिमुक्त स्वरूप है शिज है छूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वी और प्रवास है
0: निरुक्त प्रभा है सदा वंग सदा भोक्त स्वरूप पर जोगता अनूप है
1: निरुक्त सदा है भोक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है।

0: अचलिंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो प्रभूत
1: है मितो बसा के आत्म ब्रह्म है के चलंग नांग के मितो अपंग है
0: पारशंत व प्रसाद
1: मन प्रणाम गण गण मदा बर बर गांजर नर पर पांज
0: गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड
1: पवन आसमन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम
0: अंशिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मितो
1: जल थल मन दस वस पण जल थल मान दस वस बेअंत
0: पवनास त्रितास आजान बाहो एक सदा
1: ओंकार आद कथनीय नाद खल खंड

0: सरपाय है
1: पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है
0: सर्वागृत है कर्ता कर है हरता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है।

0: शिव गण को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो,
1: घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पिशानत,
0: चीटी ते कुंचरिया सोला, सब पर कृपा दिष्ट कर फूला,
1: संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी,
0: एक एक की पीर पिशाने, घट घट के पट पट की जाने,
1: जावत कर करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा,
0: जापा करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह तर सब हो,
1: ते वदन श्रित सब तारा, पापनी बूझ चार,
0: सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद वेद अर
1: आलम, निरंकार निरलाम बाद, नील नाद सांब,
0: ताका मूड़ चारत पेदा, जाको पेव न पावत वेदा,
1: तातो कर पाहन न मानत, महा मूड कछ भेद न जानत,
0: महादेव को कहत सदा, शिव निरंकार का चिन्हत नह
1: बेद, अब अपनी बद है जीती, वर्णत भैन भैन तुहि तेती,
0: तुमरा लखा न जाए पसारा, कहवे सजा प्रथम संसारा,
1: स्वरूपा रंग भयो राव कई भूपा,
0: अंडज जेरज से तज किले, उत्पुज खान बहु रच दिने,
1: कौन राजा हो बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा,
0: सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव,
1: अब रचा मेरी तुम करो, सिखो वार सिख संगरो,
0: दुष्ट देह पटेत पाता, सकल मलेश करो रण काता,
1: जी आस्तो तब शरणी परे, तनके दोष दुख तो हुआ मरे,
0: पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब

दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। ए बिनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम करे अपने चेरे। दर्शन मांगौंदे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। सुख हटल गुर सेवी है, एहनस सहज सुभाए।

पाए जड मजोर शलि चंद्रावल कान कृष्ण जा दम पाया पार जात गोपी लाया बिंद्रा बन मैं रंग किया कल मैं वेद अथर्वण हुआ ना।

पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तु कौन भी कोट गुआवे एक मिने दे दस भी हिरड़े तो मुड़ा को का करे जिस ठाकुर सो ना ही चार ता को कीजे संस्कार जाके मन लागा प्रमीठ सर्व सुख ताहू मन उठ जिस जाने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नाम तिन पाया गणत शाह अपनी दे रास खात पीत बरते अंदोलास अपनी मानकश बरसाले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत या भी खूब है बोस का विश्वास न होवे जिसकी वस्तु आगे रखे प्रभु की आगे माने माथे उसते चौगुण करे निहाल नानक साहब सदा दयाल फातमा के हेत सरपुर हो जान नेत बिरकिशाय सुरंग लावे गुण से मन प्रस्तावे जो दिशा सो चालन हार लपट उतय अंधार बटाओ सो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की बिर सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाए मिथ्या तन तन कुम सबाया मिथ्या हुमे ममता माया मिथ्या राजो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या राथास्ती अस वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अपमान मिथ्या पशु प्रकृत कुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या सुरण पनिंदा सुन मिथ्या स्वर द्रव कुहिर मिथ्या नेत्र व्यक्त पार्थ रूपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर पुकार कुतावै मिथ्या मन पर लोभ लुभा मिथ्या तन ही पर पुकार मिथ्या बासलित भी कर बिन बुझे मिथ्या सफ है सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आर्ज सास बिना कहो सूचा बिरथा नाम बिना तन अंद मुकया वता के दुर्गंध बिन सिमरन तिंडैन बिरथा विहा हे मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन किनार्थ दान धन धन तेन जे कड़ोस हर नाओ नानक ता के बल बल जाओ रह चौर कशौर कमावत मन प्रीत मुख गुण लावत जान नहार प्रभु परवीन बार भीन गाओ भीन अवर उपदेश आव न कर आओ जाओ जन मैं मरे जिसके अंतर से निंकार तिसके से एक तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आप माने आप करतन वेरा किसे दूर जनाब किसे बजावत नेरा उपाव से आनव सकल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस भाव ते लड़दाए थान तनुन तेरे समाए सो सेवक जिस कृपा करे निमक निमक जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिणस जाहे अंगमेव नानक प्रभु शरण आगति कर प्रसाद गुर देव अष्टपदी जे प्रसाद छती अमृत खाहे तिस ठाकुर कर खुण माहे जे प्रसाद सुमंत लावे तिस को सिमरत परंगत पावे जे प्रसाद विसै सुख मंदर तिसे तिहाय सदा मणि अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटम हरनावै तिसे त्याग तो प्रभावै जय प्रसाद सुख सह सोय जय मन आड़ पैर ताका जस गा बीजय जय प्रसाद तू सब को मान मुखता को जस रस नु कान जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगे मान पावे नानक पासे ती कर जावे जय

कथाष्टपदी साधक संगजलत सत्संग मल सगली खोत साधक संग मटे अवमान साधक संग प्रड़े सो ज्ञान साधक संग बुझे प्रभ नीर सत्संग सब होत नीर साधक संग पाए नाम रतन साधक संग कोबर जतन साधकी महिमा वरणे कौन पुराणी नानक साधक शोभा ब्रह्मा सुमाणी साधक संग वचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ले साध के संग बस पंचा सात संग रस पंचा सात संग सब की रे न साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कथ था साध संग अस्तमन पावे साधक संग माए ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग मां पुनीत साध संग सुने बैर साधक संग न बिगा पैर

ਜਾਣ ਆਏ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੁ ਧਾਵੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਸਤੁ ਗੋਚਰ ਲਹਿ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਵਸੇ ਥਾਣ ਉੱਚ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮੈਲ ਪਹੁਚ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੁੰਬ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਤਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰ ਸੇਵਾ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਵਾ ਸੁਰਦੇਵਾ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬਥਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਚ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੋਕਤ ਹਰੇ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਿਰਕਰ ਹਰੇ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਵਿਉਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਾ ਤਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਰਤ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸ਼ਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਮ ਬੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭਟੇ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਧਗੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਵਖਿਆਨੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤੇ ਗੁਣਤੇ ਦੂਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਧਗ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ, ਸਤਿਗੁ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਤਿਗੁ ਸੋਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ, ਸਤਿਗੁ ਸੋਭਾ ਮੂਹ ਚਮੁੱਚੇ। ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ ਸਲੋਕ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰਣ ਭੇਖੇ ਕਿਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲਾਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੁਰ ਸਰਵ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਲਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰ ਜੇਕ, ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੁਦ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਗੁਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਉ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਵ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰੁ ਪਰੇ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਇਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਪਣਿਆ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀਰੀ ਨਾ, ਆਤਮ ਰਭ ਸਰਾਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਪਰਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਕਾਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਭਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਰਥ ਵਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਗਿਰਬੀ ਸਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਪੁਕਾਰ ਮਾਹ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਹੋ ਸੁਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਮ ਉਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਗੁ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਘੇਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜਾ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਨ ਜਾਇਦ ਆਖਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਵਿਖਾਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ।
ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहात, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आव निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक, उर धारै जो अंतरनाम, सर्व में पेख भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओपर सगन सतारे अस्पद, मिथ्या नाही रसन परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पात्र रूप न पेख नेत्र, सतगुर संग करण सुने कहूं की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासन मन ते टरे, इंद्रिय जित पाई दोग ते रात, नानक कोड मदे को ऐसा परस, वैष्णो सोजसु परसो प्रसन्न, बिसन की मायत भिन्न, कर्म कर तो ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछ, केवल भगत कीर्तन संग रच, मंत्र मंत्र सिमरन गोपाल, सब उपरो कृपाल, आप दृढ़ नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल ते आगे दुष्का संग, मन ते बिनसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सास संग पापा मल को वै, तिस भगवती की मत उत्तम हो वै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मंत निरपे विशन परहीत, हर के चरण हृदय वसावे, नानक सब गोति भगवंत को भावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में शुद्ध, राम नाम सारस पीवे, स्पंड के देव जग जीवे, हर की कथा हृदय वसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमृत बूझे मूले, सुख में जाने स्थूल, चौ वर्ण को देव देश, नानक स्पंद कुसदा देश, बीज मंत्र चर को ज्ञान, चौ वर्ण मैं जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सासंग पावे जिन कोए, कर कृपा त्रुर तारे, पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे, सर्व रूप गायो कद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितन पाई धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया थुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दाद संतन पाए दिन पाए, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर की प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसे जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म तावे, जीवन मोक्ष सो कहावे, तैसा हर्क तैसा सोग, सदानंद नाही वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी माटी, तैसा अमृत तैसी विकट, तैसा मान तैसा मान, तैसा रंग तैसा राजान, जो प्रताय साई जुगत, नानको पुर कई जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जज जद खारा के तैसा तिनाओ, आपे करण करामन जोग, प्रभावे सोई फुन होग, पसर आभन त्रांग, लखन जाए पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक, उस्तद करे नेक जाने अंतन पारावार, नानक रचना प्रभ रचे बहुविद अनक प्रकार, अष्टपद कई कोट है पुजारी, कई कोड़ाचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन पर मैं उदास, कई कोट वेद के स्रोत, कई कोट तपिसर होते, कई कोड़ा आत्म ते अंतर, कई कोट कब का विचार, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते कंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज्ञातम निकोर, कई कोट पर द्रव कुहिर, कई कोट पर दुखना कर, कई कोट माय शरमाए, कई कोट परदेश वरमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट से जति जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व उपाय, कई कोट पाथर विखण बिजाय, कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश मंडल, कई कोट सर सुरन खेतर, कई कोट देवदान इंद्र सुर छत्र,
सगल समग्री अपने सुतारे नानक जिस जिस भाव है तिस ते निस्तारे कई कुट राजस्थान सातक कई कुट वेद प्राण सिमरत अर सासत कई कुट कीरतन समुद कई कुट नाना प्रकार जंत कई कुट केचर जीव कई कुट गिरी मिर सुन थीव कई कुट जक निर पिसाच कई कुट भूत प्रे सुकर मिर गाच सब ते नेरा सबहू ते दूर नानक आप अलपित्रया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट स्वर्ग नरक सुर निवासी कई कोट जन्म जीव मरे कई कोट बोझो नि फिर कई कोट बैठती खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट केतन मंत कई कोट माया मैं चिंत जह जह भाणा तह तह रख नानक सब की प्रभु के हाथ कई कोट पै बैरागी राम नाम संगत लग लागी कई कोट प्रभु को खोजंत आत्म में पार मनोहंत कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिनको मिले प्रभु विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार तिन लागा रंग जिनको हुए आप सु प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी रखंड कई कोट आकाश मंड कई कोट हो अवतार कई जुगत किनो विस्तार कई बार पचुरु पासार सदा सदा कई कंकार कई कोट गिने वो भात प्रभु ते प्रमा समात ता कंत न जाने कोय आप आप नानक सोय कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होत आत्म परवास कई कोट तत के बेत सदा निहारे को नेत्र कई कोट नाम रस पीवे मर पै ससा दी जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को सास सास समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोय नानक तिस बल हारण जल तल मई अल सोय करण करावण करण जोग जो तिस पावे सोई होग किन मैं ताप थापन हारांत नहीं किज पार वार हुक्मे दार द्रहाव हुक्मे उज कुम समाव हुक्मे चने व्यवहार कण करण प्रकार कर कर देखे अपने वड्याई नानक सा मेरे समाय प्रभावे मनुगत भावे प्रभावे ता पात्र त्रावे प्रभावे बिन शास्त्र राखे प्रभावे ता हर गुण भाखे प्रभावे ता पद दुधारे आप करे अपन विचारे दूसरे का स्वामी खेले विकसे अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अरुण आवे कहो मनुख ते क्या हुए आवे जो तिस भावे सो ही करावे इसके हाथ हो तन सब कुछ ले जो तिस भावे सोई करे अणजाणत विख्या मेरे चे जे जानते अपने बचे पर मैं भूला द दिस्तावे निमकुमार चार गुण फिर आवे कर कृपा से अपनी भक्त दे नानक ते जन्ना मिले खिन मैं नीच गीड़ को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कशुन आवे तिस तत्काल द जिस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखन गणित जगदीश जी अपने सब जिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपने बनदया बनाई नानक जीवे देख बड़ाई इसका बल नाही सहात करण क्राम सर्व कुणनाथ आज्ञाकारी पपरा जी जो तिस भावे सोई फणती कभू उच नीच में बस कभू सो कर करम गस कहूं ने चिंद विहार कहूं ऊ विकास प्यार कहूं बेता ब्रह्म विचार नानक्या मिलावन हार कभू निर्द करे वो भात कहूं सो रह दिन रात कहूं माह क्रोध विकराल कहूं सर्व की तुरवार कहूं हुए बह बड़ राजा कहूं भिखारी नीच का साजा कहूं आप कीर्तमय आवे कहूं फला फला कहावे ज्यों प्रभु आखे तिवीर गुरु प्रसाद नांग सच गए कबू हो पंडित करे विज्ञान कबू मोन तारी लावे त्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू से साध मो ज्ञान कबू पीड़ हस तंग हो जियान कजुण परमे परमैया नाना रूप जो स्वांग दिखावे जो प्रभावे तेन चावे जो तिस भावै सोई होए नानक तू जाया बिन कोए कहूं सात संगत पावे सुस्थान ते बोरन आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास सुस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम वते करांग सदा से फारम के संग ज्यों जल में जलिया एक टन त्यों ज्योति संग जो समान मिट गए गमन पाए विश्राम
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤਿ ਗੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ।

अर्थ जन की तू सेवा लाग। आवण जान हुई तेरा नानक तिस जन के पूजो सत पहला सलोक। सतपुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाओ तिसकै संग सिकिरदर नानक हर गुण गाव स्पद। सतगुरु सिखी कर कृपाल सेवको गुरु सदा दयाल। सिखी गुरु दुरमत मल हिरे गुरु बचनी हर नाम चरे। सतगुरु सिखे बंधन काटे गुरु का सिख विकार ते अटे। सतगुरु सिखो नाम तंदे गुरु का सिख विभागी है। सतगुरु सिख कल पल सवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कसम जनावे हर हर नाम दे सत्यावे। मन बिच सतगुरु के पास ते सेवक के कारज रास। सेवा कर तो है नेकामे तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले। बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेव परमेश्वर की का जाने। सो सतगुरु हरनावन कुबार गुरु को बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग दाता। ब्रह्म जन जन में पार मेका अपने किस परम सह सहन प्लैन जाई। नानक ऐसा गुरु उड़भागी पाए। सफल दर्शन फेकत पुनीत परसद चरण कत निर्मल रीत। पिंड संग्राम रू गवे प्रवे पार ब्रह्म की दुर्गे गवे। सुन कर वचन करण खाने मन संतोख आत्म ध्याने। पूरा गुरा खे जाका मंत्र मुर्दिष्ट पिक संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक दिस पावती ले मिलाए। जिह पाए कुस्ता तनेक सतपुरु पूर्ण बबे। काहू बूर न पोच प्राणी अगू गोत्र बण रबाणी। निरहर निर्वैर सुखदाई ता की कीमत कि न पाए। अनक भगत बंधन नित करे चरण करुण हृदय सिमर। सतबलहारी सतगुरु अपने नानक दिस प्रसाद सब रोज अपने। ये हर सुभाव है जन को अमृत पी अमर सो स्पुर का नायक देव ना जाके मन पकड़े उदा। सियाट पर हर का नाम ले सच उदय सेवको दे। मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हरे। कंध कर दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तैते नासे। तब तुम्हें ठंड बरताए अंत पे दुख ना ठे भाए। जन्म मरण के मिटे देस साधु के पूर्ण उपदेश। भव चौका निरह बस सगल प्याज मन ते खै नसे। जिसका साधन कृपा धारी सत्संग जब नाम मरारी। थित पाए चुके भ्रम गोविंद सुन नानक हर हर जस सरुणे। निर्गुण आप सरगुण पियो हे कला धार जिन सगली मोही। अपने त्रिपुर आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय सरम रंतर को सोए। उत्पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध के संग। रच रचना अपनी कलधारी अनकबार नानक बलहारी सलोक। साथ न चल बिन भजन बिखिया सगली चार। हर हर नाम कमामना नानक तन सरस्वरी। संजना मिल गुरु विचार एक सिमरनाम धार। उपाव समेत विचार विचरण कुंज मैं विचार उपकरण करण सुप्र सम्रा दृढ़ कर कहु ना मरवात। हे धन संजो भगवंत संजना का निर्मल मानते एकास राख मन माय। सर्व रूप नानक मिल जाए जिस तन को चार कुंड रतावे। सो तन हर सेवा ते पाव जिस गुण बच मे सो सुख साधु संग प्रीत। जिसो पाकुर कर परि करणी सासो भजर की शरणी। अनकु पावी रूह न जाए रोक ने हर कुदलाए। सर्व निधान मैं हर नाम दान जप नाम दुर्गे प्रवान। मन प्रभु दोहर के नाए दा दिस तावते आवे ठाए। ताको बिघन लागी कोए जा करि जिवसे सोए। कल ताती ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव। भोगन से पूर्ण व्यास भगत आत्म प्रकाश। तेत घर जाए वसे बनासी कहो नानक काटी जम फासी। तत् विचार कहे साचा जन्म रे सोका चोका चावा। गुण मुड़े प्रभु से व्यापते अक्षर गुरु देव रतन जन्म का उदार। हर हर सिमर प्राण उदार अनक भावन सूटन हारे। सिमर सास वे विचारे हर की बहुत गुरु मन लाए। मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल सिरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटुंब बनता इंते कुण तुगुण सनाता। राजनुमा विस्तार इंते को कुण छुटकार। अस्ता स्थिर अस्त सवारी झूठा डम झूठ पसारी। जिन दिए तिस बुझे निगाना नाम विसार नानक पहचाना। गुर की मातु ले आने भगत बिना बोडू बे सियाने। हर की बात करो मन मीत निर्मल होए। तुम्हारो चेह चनन कुण राख मन माए। जन जन की कलिख जाए आप जपो अवर नाम जपाओ। सुनत कै त्रैत कत पाओ। सार पुज सार कुण आओ सस पाए नानक गुण गाओ। गुण गाओ त्रे तुरस मैल बिन जाए मेघ फैल। ओ चंद सस गुणाल सास करा सर नाम समाल। छाठ सियाण सगली मना सास पावे सच थना। हर पुंज संस करो बिहारियां सुख दुर्गे जयकार। सर निरंतर एको दे कहो नानक जाके न सगले। एको जाप एको साला एक सिमर एक गुण आय। कस के गुण गाव आनंद मन तन जाप एक भगवान ते को एक हरा। पूर्ण पूर पूर्व वारण विस्तार एक ते पे एक रात प्राच गए।
ਮਾਣ ਤਣ ਅੰਤਰੀ ਗੁਰਵਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਵਿਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੇ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਦਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀ ਰੇ ਕੋਟੇ ਕੋਦ ਹਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਸੁਖੋਏ ਅਰਸ ਭਾਵ ਰਿਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਕਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੇ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗੇ ਪਰੇ ਸਰਨਾਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪੁਰਗਾ ਸੰਦੇ ਬੁਲਾ ਗੁਟ ਭਾਗੀ ਜਪੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਖੋਏ ਸੇਵਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤਲੇ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਆਲ ਸੇਵਕੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾੜ ਮੁਖ ਦਿਨ ਪਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਛੁਪਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹਜ਼ੋਰ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਧਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕੁਛ ਰੇ ਘਰ ਨਾ ਪਾਨੇ ਸੋ ਕੁਛ ਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ ਸੋ ਕੁਛ ਰਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ ਸੋ ਕੁਛ ਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜਗਨ ਮੇਰਾ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਬਿਰਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਵਿਸਰੇ ਵਿਗਤੇ ਕਾਢੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਕਾਢੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਤਾਤੇ ਵਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੰਤਾ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਏ ਕਾਮ ਆਮ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ ਆਪ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਭਗਤ ਪਾਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨੁ ਸਿਹਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖਨਦ ਨਾਮ ਬੁੜ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਆਵਤ ਨਾਸ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗਿਨਚਾ ਸੁਖਜੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਮਚਾਓ ਮੰਤਨ ਤੇਰੇ ਸੁਆਵ ਨੇਤਰੋ ਵੇ ਦਰ ਸੁਖੋਏ ਮਨ ਦੁਖੇ ਸਾਹ ਚਰਨ ਤੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮੰਤਨ ਅੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗੇ ਭਗਤੀ ਜੇ ਕਰਮਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਛਪਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ ਸਭ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਅਕਸ਼ਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਿਸਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਵ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਵਾਲ ਆਤਪੁਰ ਕਰਨ ਕਰਤਾਲ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾ ਮਣੀ ਧਿਆਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚੇ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਵ ਬੈ ਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ ਨਿਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਗਰੋਜ ਪਟੂ ਭਗਤ ਉੜਿਆ ਯਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਏ ਭੋ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੁਗਰਣੀ ਸੋਭਾ ਤਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਵੈ ਜਬ ਆਕਾਰਕਸ਼ਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਤਬ ਪਾਪੁਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਬਿਰੋਕੇ ਸੰਗਮਾ ਜਬ ਉਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹ ਨ ਜਾਪਤਾ ਹਰ ਸੋ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪ ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਪਾਰ ਪ੍ਰੰਭ ਤਾ ਮੋਕ ਜਦ ਭਵਨ ਭਰਮ ਆਪਣ ਕੇ ਲਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰਨ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਣੀ ਤਾ ਬਨ ਮੁਲਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਣੀ ਜਾਵੇ ਕਰ ਕੋ ਪਾਰ ਤਣ ਅਰਸੁਲ ਕਰਨ ਕੋ ਪਣ ਉਤਾਰ ਜਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਤਬ ਸਿਵ ਸਖਤ ਕੋ ਬਿਠਾਏ ਜਾਵੇ ਆਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋ ਧਰੇ ਤਬ ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਦ ਡਰੇ ਆਪਣ ਚਲ ਤਬ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਕਰ ਕੋ ਪਾਰ ਗੁਣਾ ਸਿਵ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਜਨ ਮਰਨ ਕੋ ਕਾ ਵਿਨਾਸਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਵਗਤ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਤਬ ਚਿੱਤਰ ਕੁਪਤ ਕਿਸ ਪੁੱਛਦ ਲੇਖ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਚਰ ਗਾਦੇ ਤਬ ਕੁਣ ਛੁਟੇ ਕੁਣ ਬੰਧਨ ਵਾਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪੇ ਚਰਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਜਾ ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਹਿ ਧੋਤਾ ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਮਾਨ ਤੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ ਤੈ ਕੌਣ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਮਾਨ ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੈ ਛਲ ਛਲ ਲਗਤ ਕਉ ਕੀ ਜੈ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਜੋ ਸੰਗ ਸਮਾਵੇ ਤੈ ਕਿਸੇ ਭੂਕਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਕਰਨੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਰਨੇ ਸਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਤਬ ਕੌਣ ਮਾਏ ਬਾਬਿੰਦਰ ਸੁਦਵਾਏ ਜੈ ਸਰਵ ਕਲਾ ਪੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੈ ਬੇਦ ਦੇਵ ਕਹਾਂ ਕੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਵਤਾਰੇ ਤੋ ਸਗਨ ਸਗੁਨ ਕਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜੈ ਆਪਣੇ ਊਚ ਆਪਣੇ ਅਵਨੇਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਏ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਣ ਬਿਸਮੈ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਾਨੋ ਆਪ ਜੈ ਚਲ ਅਛੇਦ ਭੇਦ ਸਮਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪ ਤੁਮਾਇਆ ਪਸਗੋਆ ਪੈ ਦੇ ਸੈ ਤੈ ਹੁਣ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੈ ਤੈ ਜੈ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਤਿਆਰ ਤੈ ਕੁਣ ਕਦੇ ਕੁਣ ਸੁਣੇ ਯਾਰ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸੁਆ ਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜੈ ਪ੍ਰਚੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਤੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪਾਪੁਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵ ਤੈ ਕੋ ਨਰ ਕੋ ਸੁਰ ਕੁੰਛਾਵਾਲ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਜਾਲ ਹੁਮ ਮੋਹਰਮ ਪੈ ਭਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਣਕ ਮਾਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਵਖੇ ਆਣ ਆਪਣ ਕੀ ਲਿਆਵ ਕਰ ਦੇਖੇ ਖੇਲ ਸੰਗੋਚੈ ਦੋ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਜੈ ਭਗਤ ਭਗਤ ਆਪ ਜੈ ਪਸਰੇ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂ ਪਾ ਕਹਿ ਆਪੇ ਦਣੇ ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਬਣੀ ਆਪੇ ਕਉਤੇ ਕਰਿਣ ਚੋ ਜੇ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗ ਨਿਰਜੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਵੇ ਜਿਸ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਗਨੇ ਤੇ ਤੋਲੇ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਸਲੋਕ
जी जानकी ठाकुरा पे वर्तनाद नानक को पसरिया दूजा कै दृष्टार स्वय आप दे आप सुनने हारे आपे का विस्तार जाति भावत सुभाए अपने भाने लय समाए तुम ते भिन्ने किशोए आपन सु सब्जगत परोए जाकू प्रभु जी आप जाए सचनाम सुजन पाए सो सुंदर सी तत कवेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ता के आत दीन दयाल नाथ को ना जिस रास के सुवे न मारे सो हुए सुमन सारे तिस ता जिया वर कहां को जाए सब श्री एक निरंजन राय जी की जुग जाके सब हाथ अंतर बार जानो सात गुणिदान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूरे दयाल साहू कृपाले अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रो ब्या परत पाले जिन बो पा जो जो रचो सत से ते आत जिस पावे तिसले मिलाए भगत करैर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर माने करण हर नानक की जाने जन लग हर के नाए तिस की आसन बिरथि आए सेव को सेवा बुन आए हुकुम बुझ परम पद पाए सेव प्रणय विचार जाके मन सरंकार बंधन दूर भय निर्वैर अंधन पूजे गुर के पैर लोक सुखे परलोक सुवैले नानक हर प्रभु आपे मिले सत्संग मिल कर आनंद गुण गाव पर परम आनंद राम नाम तत करो विचार दृढ़ दे का करो उधार अमृत वचन के गुण गाव प्राण तरण कह सुहाव आठ पर वेखो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुनो उपदेश हृदय वसाओ मन से नान कुल पाओ हल पल दुले सुआ राम नाम द्रोड़ तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन से ते साज पर रखिया मन ता नाम चपोल बुलाए दुख दर्द मन ते हो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर कहने वे के तुम्हारी एका टेक रखोण माए नान बोल नया हो जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए गुरे राखन हार ते आए निर भाव जपै सकल भाव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे जिस प्रभु राखे तिज नाए दुख नाम जब मन हो सो चिंता जाए मिटे अहंकार थे जन को कोई न पहुंचन हार श्री उपर ठाडा गुर सूरा नानक ता के कार्य पूरा मत पुरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पेख दुर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हारो तन सेवा से पुराण अंतर जामी प्रफुरदान जिस मन से दुख निदाल ताके निघ्न आवत काल अमर पाए अमरा पद पाया सात संग नानक हर त्या सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अश्वय सन संगम त्रु प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कसकट मायण करंग नाना दिष्टाय नौन जमृत प्रभु का नाम देहि मैं इसका अवसराम सुन समान तैनाल कह न जसवात इंदे कैसे आप दिखाए नानक तिजन आप हो जाए सत नानक तिन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर आनंद कड़कड़ ब्याह प्रह भगवान तरण मय आकाश ब्याल सब लोक पूर्ण पुरपाल बण तिन पर्वत है पार मंजा से अग्ञा तैसा करम पौन पाणी बै संतर माए चार कुण दय समाए तिस्ते बिन नहीं कोटा गुरु प्रसाद नानक सो पा वेद प्राण सिमरत मैं देख सस्य सुरन कतर मैक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल ना कबू डोले सर्व कला करके लैके मोल ना पाए गुणे मोल सर्व ज्योत मैं जाके जो अतारे हो स्वामी गुरु प्रसाद प्रभु का नाथ नानक तिन मैं विश्वास संत जना का भेखन सा ब्रह्म समझना के हृदय सब धर्म समझना सुन सुभ वचन सर्व व्यापी राम संरचन जिन जाता दिस घेरा सात भजन साधु सब कह जो जो होए सोए सुखमाने करण कराउन आप जाने अंतर बसे बार पियो नानक दर्शन दे समोए आप साथ किया सब साथ तिस प्रभु ते सगले तपात तिस भावे ता एकंकार तिस भावे ता कर विस्तार तिस भावे ता एकंकार नानक पाल अंकल रखने जाए जिस भाव तिले मिलाए कमन कुड़ कंकइए दूर आपे आप भरपूर अंतर गज से आप जनाए नानक आप जाए सर्वभूत आप वर्तारा सब न्याणे फेकनारा सब समग्री जा का तना आपन जा से आप सुना आम जाने खेल बनाया अग्ञा कारी की नी माया सब की मद अलिप तो रह जो कुछ गण स्वापे कहे अग्ञ आवे अग्ञ जाए नानक जा भाव तन ले समय से हो सुनाई बुरा उड़े कहो किने कुछ करा आप भला कर तुदा नहीं किया फे जाने अपने जी की आप साज थारी सब सोच पोते अपन संगराज ताकि कदम कही न जाए दूसरो तसो जी भाए तिसका की आसा परवान गुरु प्रसाद नानक जान जो जाने तिसा सुको आ मिला ले प्रसो धनवंत कुलवंत पतवान जीवन मुक्ति हृदय भगवान ते धन धन धन जने आए जिस प्रसाद सब जगत रह जने कहे सुहाव जन के संग चित आवे नावा मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक है।

पदी जाचक जन जाच प्रभ दान कर कृपा दे वो हर नाम साजन की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाऊं सास सास प्रभ तुम्हें त्याऊं। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भक्त करो प्रभ की नित नीत एक कोटि को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मान सुख होए अरस पावे बरला कोय जिन चाखे से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सो पर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध कै संग परे सरनाम सब त्याग अंत प्रकाश अंधन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होय दयाल सेवकी नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दुख परम गए आयश पुरनी श्रद्धा सब पूरी रब रिया संग संग हजूरी। जिसका साथ लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना भन सो क्यों बिसरै जे किया जन सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न में राख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ है जन्म जन्म का टूटा गंड है गुर पूरा तत ए बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन होशी शार सर्व कल्याण।

सरगुण निर्गुण निरंकार सुन सुमाधि आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी। जब अकारे कशना दृष्टेता पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाधो तब बैर विरोध की संक मात, जब इसका वर्ण चिर न जापत तब अर्क सुखो किसे व्यापत। जब अपने आप पर ब्रह्म तब मोह कांक्ष होवत परमो, अपन केला वर्तीजा नान करने हार ना दूजा। जब ओत प्रभ की बलतनी तब बंद मुक्त को किसको गणी, जब एक अर्घ में पार तब नरक सुर को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो जाए, जब आपे आप अपनी जोत तरह तब कौन डर कौन कत डर है, अपन चलता आप करने हार। नानक ठाकुर अगम अपार अवनाशी सुख अपने आसन, तय जन मन को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किश होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किश पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपने आप आपी चर्जा नानका अपन रूप आपी परजा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तब बिन मैल कहो कह तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण ते कौन कुमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तैल तह शल शदर लगत कहो कीस, जय जो स्वरूपी जो संग सुमावै तै किसै भूत कौन तृप्तावै, कन क्रामण करने हारो नानक करते कनाए सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत पाई, जब सर्व कला पेपर बीन तै वेद देव कहाँ को चीन। जब अपने आप पुरता रह तो सगना